उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पूछताछ की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार है, रबीउल अव्वल की 16 और अगस्त की 30 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिंस में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकाती कमेटी की निशानदेही पर 8 अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। शहबाज शरीफ ने पिंस में आतिशज़दगी के वाक़े के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को बचाने वाली नर्स रज़िया नौरीन को सितारे खिदमत और 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की मंजूरी दी है। वज़ीरे खजाना ने कहा है कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बराह रास्त सरमायाकारी है। भारत में कैद 25 पाकिस्तानी रिहाई के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। गजा पर ताजा इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 177 रन 7 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी की निशानदेही पर 8 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। उन्होंने ये मंजूरी पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक लाहौर में आला सतह के एक इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में तहकीकाती कमेटी की अबूरी रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ न सिर्फ महकमाना बल्कि फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म दिया। इन 8 अफसरान में पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ इमरान सिकंदर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डॉ मुताहिर शाह और डॉ अवैस अली शाह, न्यूनेटल डिपार्टमेंट के सरबरा प्रोफेसर डॉ सादिया रियाज, सीनियर रजिस्ट्रार डॉ नखमा, डॉ नौशीला अमजद, पिम्स के असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान और सीडीए के डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज डॉ अब्दुलरहमान शामिल हैं। उन्होंने पिम्स में तैनात निजी सिक्योरिटी कंपनी और उसके अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने मुअत्तल किए गए अफसरान की जगह फौरी तौर पर नए अफसरान तैनात करने की हिदायत की। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉ मोहम्मद सलमान को पिम्स का कायमकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दी। उन्होंने आतिशज़दगी के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर एक नौमौलूद बच्चे को बचाने वाली नर्स को सितारे खिदमत देने की भी मंजूरी दी। उन्होंने वार्ड में मौजूद एक नर्स और एक खातून सिक्योरिटी गार्ड को ओएसडी बनाने और उनके खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शाहिद खान की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करके हतमी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इंक्वायरी कमेटी की अबूरी रिपोर्ट फौरी तौर पर आवाम के सामने लाई जाए और वजारत कौमी सेहत की वेबसाइट पर भी आवेजा की जाए। उन्होंने कहा कि गफलत के मुर्तकिब अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों की अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरी कौम सोगवार खानदानों के गम में शरीक है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अफराद को मिसाली सजा दी जाएगी ताकि मुस्तकबिल में किसी माँ का बच्चा गफलत के बायस जान से ना जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स में आतिशज़दगी के वाक़े के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को बचाने वाली नर्स रज़िया नौरीन को सितारे खिदमत और 1 करोड़ रुपए नकद इनाम देने की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने नर्स रज़िया नौरीन की गैर मामूली बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मिसाली जिम्मेदारी और जुरतमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने नर्स रज़िया नौरीन की अपने फर्ज से गैर मामूली वाबस्तगी को भी सराहा, जिन्होंने अस्पताल में बड़ी तबाही से चंद लम्हे कबल अपनी जान खतरे में डालकर एक बच्चे को आग के शोलों से बचाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमराह कराची में जामियातुस सैफिया यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में सैफी हस्पताल के अमराज़ कल्ब विंग का इफ्तिताह किया।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری پاکستان کے مستقبل کے لیے براہ راست سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیفی ہسپتال کا نیا کارڈیک ونگ کراچی میں ایک بہترین مرکز کے طور پر خدمات انجام دے گا اور ملک بھر کے طبی اداروں کے لیے ایک مثال بنے گا۔ وزیر خزانہ نے معیاری صحت کی سہولیات تک رسائی بڑھانے اور سرکاری شعبے کے صحت کے بنیادی ڈھانچے پر دباؤ کم کرنے میں نجی اداروں کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امور خزانہ کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ نئی شروع کی گئی آسان ٹیکس اسکیم کا مقصد تاجروں اور دکانداروں کے لیے ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانا اور ملک میں ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانا ہے۔ وہ کراچی میں وانے صنعت و تجارت کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کی تاجر اور دکاندار تنظیموں کے نمائندوں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ یہ اسکیم ٹیکس کے طریقہ کار کو آسان بنانا اور ملک میں ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانا ہے۔ وہ کراچی میں وانے صنعت و تجارت کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کی تاجر اور دکاندار تنظیموں کے نمائندوں کے

0: वसूल किया जाने वाला टैक्स मुकम्मल तौर पर एडजस्ट किया जा सकेगा। उन्होंने मजीद बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर ताजरों को सहूलत फराहम करने और उनके कारोबारी मसाइल के हल के लिए FBR के हुक्काम हर माह एक हफ्ता कराची में गुजारेंगे। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दूसरे बैनल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर कंबोडिया के दारुल हुकूमत नॉम पेन में कंबोडिया के बादशाह नोरोदोम सेहामोनी से वफद के हमरा खैर सगाली मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट ने बादशाह की जानिब से पुरतपाक मेजबानी और कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेजबानी पर कंबोडिया का शुक्रिया अदा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तनाज़ात और माशी मुश्किलात से दोचार दुनिया में पार्लिमानों को मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखकर मुल्कों के दरमियान राबिते मजबूत बनाना होंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि तीसरी बैनल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में मुनक्किद की जाएगी। कौमी वरसे और सकाफत के वजीर औरंगजेब खान खिची ने कहा है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और रूहानी वरसे पर मबनी हैं। वो इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान की आज़ादी की 35वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा खुसूसी सकाफती तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर ने कहा कि शायरी, मौसीकी, फन और ख्यालात सदियों तक इस खित्ते में शाना बशाना सफर करते रहे हैं, जिसने दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे के मजीद करीब किया। सकाफती तकरीब में मारूफ उज़्बेक फनकारों ने मौसीकी और रिवायती रक्स पर मुश्तमिल शानदार प्रोग्राम पेश किया। भारत में कैद 25 पाकिस्तानी अपनी रिहाई के बाद वाहगा अटारी सरहद के जरिए वतन वापस पहुंच गए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के हुकाम वाहगा अटारी सरहद पर मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम की। हाई कमीशन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भारतीय जेलों में कैद तमाम पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और वतन वापसी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद जबरी गुमशुदगी के बारे में आगाही पैदा करना और उन अफराद को खिराज अकीदत पेश करना है जो लापता हो चुके हैं। इस साल दिन का मौजू है मुतासरीन पहली तरजीह और फौरी कार्रवाई। गजा में जंगबंदी की ताजा खिलाफ वर्जियों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए हैं। हमलों में गजा के जनूब मगरबी और वस्ती इलाकों में फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। क्रिकेट। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 170 रन 7 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा। इंग्लैंड को अब तक 357 रन की बर्तरी हासिल है। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बाज मकामात पर बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 27, पिशावर 30, क्वेटा 19, गिलगित 20, मरीज 17, जबकि मुजफ्फराबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़्वी तौर पर अबरालूद रहने और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 31, लेह 14, पुलवामा और शुपियां 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
1: Pakistan ki zyadatar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: 101 FM।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: दिस इज FM 101।
5: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
6: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स में आतिशज़दगी के वाके की तहकीकाती कमेटी की निशानदेही पर 8 अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। वजीर खजाना ने कहा है कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बराह रास्त सरमायाकारी है। भारत में कैद 25 पाकिस्तानी रिहाई के बाद वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। गजा पर ताजा इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिजा है। मां अपने बच्चे नू पैदाइश के पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिजा दे नाल नाल 2 साल की उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे के दुध ते फीडर की वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां ने दुध का कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। यह पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमल ही पेश किया गया है।
2: And now you are tuned into
3: FM 101
4: FM 101
5: FM 101 101 101 101 101

नजर पर दिल को तुम करना छोटा जरा भी नहीं, ये मेरी इल्तजा है मशवरा ही नहीं। तुझे लगता है तुझे सब पता है मेरी जान, तू कितनी खूबसूरत तुझे ये पता ही नहीं। तू जो चाहे कर ले

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकाती कमेटी की निशानदेही पर 8 अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि सेहत के शोबे में सरमायाकारी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए बराहे रास्त सरमायाकारी है। भारत में कैद 25 पाकिस्तानी रिहाई के बाद वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 177 रन 7 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पिम्स में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकाती कमेटी की निशानदेही पर 8 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर ने कहा है कि हुकूमत की मौसर मौशी हिकमत अमली और दानिशमंदाना मालियाती पॉलिसियाँ माली नज़्म व ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम में मुआविन साबित हो रही हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पाकिस्तान के रेल के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए ML1 रेलवेज अपग्रेडेशन मंसूबे में तआवुन कर रही है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल 177 रन 7 खिलाड़ी आउट से आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: We'll be right back after this short commercial break.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.
5: FM 101.
6: FM 101.
7: 101. 101. 101. 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की के यौम फतह के पुरमसरत मौके पर तुर्की के सदर, हुकूमत और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म लंदन से इस्तांबुल रवाना हो गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ सरकारी मसरूफियात अंजाम देंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पाकिस्तान के रेल के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए ML1 रेलवेज अपग्रेडेशन मंसूबे में तआवुन कर रही है। पाक फौज मुल्क में तालीम के फरोग और आवामी फलाह बहबूद में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है।
1: This is FM 101.1.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is
1: ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵਫਾ ਫਿਰ ਦਾ ਨੀ ਲੱਭਣੀ ਰੁਕ ਜਾਏ।

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 2 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने तुर्की के यौम फतह के पुरमसरत मौके पर तुर्की के सदर, हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। नायब वज़ीर आज़म लंदन से इस्तांबुल रवाना हो गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ सरकारी मसरूफियात अंजाम देंगी। खुसूसी समाकारी सहूलत कौंसिल पाकिस्तान के रेल के बुनियादी ढांचे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए ML1 रेलवेज अपग्रेडेशन मंसूबे में तआवुन कर रही है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल 177 रन 7 खिलाड़ी आउट से आज फिर शुरू करेगा।
2: This is FM
3: 101. माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माएं अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माएं बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिना जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफाद आमा के लिए पेश किया गया।
2: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Farhad Naz. First, the headlines. President and Prime Minister have extended warm felicitations to President, government and people of Turkey on joyous occasion of their Victory Day. Deputy Prime Minister has departed London for Istanbul, where he will undertake official engagements. Advisor to the Finance Minister says Pakistan has so far repaid around 6,000 billion rupees ahead of schedule. Second cricket test of 3-match series between Pakistan and England is underway at Lord's. Now the news in detail. President Asif Ali Zardari and Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif have extended warm greetings to President Recep Tayyip Erdogan and the brotherly people of Turkey on the occasion of their Victory Day today. In his message on X, the President said Pakistan and Turkey enjoy a unique and enduring relationship rooted in deep bonds of history, faith and mutual support.
1: This is FM.
2: माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माँ अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिला जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफादे आमा के लिए पेश किया गया।
1: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: One Above, FM 101.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
0: FM 101.
3: 101 FM.
2: FM 101.
4: FM 101.
2: FM 101.
1: FM 101. 101. 101. 101.

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
1: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: Socks. And now you are tuned into
1: FM 101.

0: faire.
1: Free socks.
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.

0: de.
1: Smile and dial 111-111-FM.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: I'm on the way, yaar. Bas aadha ghanta de.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station. There is Sound of the Music. I'm Kamez Van Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain. Shining Frequency FM 101 here, FM 101 ke Islamabad studio se live exclusively aap mujhe sun rahe hain. Umeed karte hain tamam sunne wale khairiyat se honge, jahan kahin bhi honge Allah Taala ke hifz o amaan mein honge. 30 अगस्त साल 2026 और इतवार की एक खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद है FM 101 के स्टूडियो से. उम्मीद करते हैं तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे. 30 अगस्त साल 2026 और इतवार की एक खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद

बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम, एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ। लाइव है यार, हो जाता है, ऐसे होता है कभी कभी यार, जब आप एक वीक के बाद वैसे आए तो ऐसे ही हो जाता है। आप लोगों के कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स हम सांसों शामिल करते रहेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहला सॉन्ग, पहला गाना प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम। वजीराबाद से लेके कश्मीर एंड बियॉन्ड, इस्लामाबाद स्टेशन टेरिटरी और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, सबको वेलकम। जहां तक हो सके पाकिस्तान की तरक्की में अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी।

ਓਏ ਡਾਡੇ ਦਿਲ ਘੇਰ ਖਿੱਚੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਔਰ ਖਿਆਲੋਂ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ किसी को सोचने का ख्याल तो अगर आपके पास चॉइस होती और टॉपिक भी आज कुछ हमारा ऐसा ही है और आई डोंट नो कि शायद मैंने ये टॉपिक पहले रखा हुआ है कि नहीं रखा लेकिन मैं भुलक्कड़ हो गया मुझे याद नहीं रहते काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती अगर हुआ है पहले तब भी लेकिन अगर आज मैंने रख लिया तब भी आप इस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपके पास चॉइस होती तो अपना नाम क्या रखते अगर आपके पास चॉइस होती इन केस के अगर आप अपना नाम खुद रख सकते तो क्या रखते आप लोगों के मैसेजेस 4471 पर facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान और कॉल्स आप लोगों के मैं शामिल करूंगा 10:30 की ब्रेक के बाद 0511111001 9202540 जस्ट इन केस In case you forgot, and my name is Muhammad Yusuf. कुछ नया म्यूजिक कह सकते हैं है पुराना लेकिन नए अंदाज में AI का दौर है मैनू रोटी दे बहाने वे एड़े साड़े नसीब

और अगर किसी की चीज गुम जाए उसको ढूंढने में आप मदद करें उसकी, तो नेकी की नेकी है, सवाब का सवाब, और बदले में आपको कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू द शो, जिमी फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच। और उफ, पूरे 12 मिनट्स वेट कराए आपने, तो 12 मिनट आप ऊपर शो करके जाइएगा।

447 पे आप लोगों के साथ साथ मैसेजेस में शामिल करूंगा और आपने हमें बताना है कि अगर आपके पास चॉइस होती तो क्या आप अपना नाम

101 पूरे पाकिस्तान की आवाज। ये सब लोग हमारे अपने और ये सब जुबानें हमारी अपनी।

उसी साथ साथ एक एडवाइजरी है, स्पेशली जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में मौजूद हैं उनको पता है कि आज जिस तरह से बारिश हुई, इतनी ज़्यादा आज बारिश थी, तो उनके लिए एक एडवाइजरी है, स्पेशली जो रावल डैम के मलहका इलाकों में लोग रहते हैं। रावल डैम के स्पिलवेज कल मोरखा 31 अगस्त सुबह 6 बजे जो है खोलने का फैसला किया गया। रावल डैम का लेवल जो है 1751.40 फुट पर पहुंच चुका है और करंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मतवक है। नाले से मलहका रहायशी आबादियों के मकीन जो है मोहतात रहे और हम जैसे कुछ लोग होते हैं जब स्पिलवे खोलते हैं तो साथ चले जाते हैं, जो शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ने चले जाते हैं, क्योंकि जब वो स्पिलवे के ऊपर से जब वो छलांग लगा के आती है ना, वहां से उसको कैच करते हैं। ऐसे हम एडवांस किस्म के लोग हैं ना। तमाम से इल्तमास है कि पानी के बहाव तेज होने की सूरत में नाले और नाले पर बने आरजी पुल क्रॉस करने से गुरेज करें।

जी, और कहते हैं कि जी एक बात का जवाब दीजिए कि सभी सिंगर पहले सिंग किया हुआ सॉन्ग खुद जब जब खुद से अगेन सिंग करके ख़राब क्यों कर देते हैं। लाइक जैसे अभी हाँ ये मैं देख रहा था पाकिस्तान आइडल में गए थे तो उन्होंने एक वहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी क्योंकि इनके पहला वो देखिए लाइव हर किसी का जो है वो गाना इतना आसान नहीं होता है। अब्दुल नूर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं रिवांस गार्डन लाहौर से। यूसुफ भाई आदाब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। टॉपिक हमने प्रोग्राम में रखा हुआ है कि अगर आपके पास चॉइस होती तो आप अपना नाम क्या रखते हैं।

ओके जी, शहजादी मंजूरा हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम ऑलवेज गुड एज यूजुअल गुड है जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और जल्दी से आप ठीक हो जाएं। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का।

सत्यन फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई। और अगर मुझे ऑप्शन पे जाएं तो आपका नाम मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। रख ले आप वाला है भी भी। आप तो लाइव गाकर सबको पीछे छोड़ देते हैं। रावलपिंडी के खूबसूरत, रावलपिंडी इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम मौसम को मद्देनजर रखते हुए एक खूबसूरत सा सॉन्ग, एक लेजेंडरी मेल सिंगर और लेजेंडरी फीमेल सिंगर

0: 0501 111 0101 0102 5402.
1: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे ठीक ठाक है, फिट फाट है, क्या हो रहा है जनाब रेडियो के साथ साथ?
0: मैं रेडियो ठीक कर रहे हैं नाल ना।
1: मेरी जान, बहुत हसीन मौसम है और रेडियो के साथ साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूं।
0: अच्छा, रेडियो के साथ साथ एंजॉय कर रहे की मतलब पकोड़े ला ला के खा रहे नु?
1: नहीं, मैं छत पे उसके बैठा हुआ।
0: अच्छा, कौन कहां से तारफ?
1: नहीं नहीं यूसुफ भाई, पता क्या करता हूं, बैरक में बैठा था ना मैं, कहते लड़के बोल क्या दफा हो छत पे, तो मैं वो छत की वजह चोर की वजह मैं ऊपर आ गया।
0: अच्छा, चले तारुफ करवा दें।
1: शरियार अहमद बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: अल्लाह का करम, आप सुनाए।
0: अच्छा, छुट्टी पे
1: गया था, 444 शामिल मान में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, 447 पे आपने मुझे मैसेजेस भी किए?
1: अभी भी किए हैं मैसेज, शायद पढ़ा नहीं, रीड नहीं किया शायद आपने अभी, तो मैंने कहा चलो कोई निकाल भी कर लेते हैं।
0: अच्छा, मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है।
1: चले कोई मसला नहीं, फिर दोबारा कर देते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो
1: मैंने चारों सिमों में डलवाया हुआ है, तो 1500।
0: अच्छा ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरा नाम यही रहेगा क्योंकि शहर यार, इसके तीन मायने हैं, बादशाह, गम खार एंड काला गुलाब।
0: विद गमला
1: के नहीं सदी, पता क्या, जो माँ बाप ने रख दिया ना, फिर नाम बदले नहीं जाते। तो एक बार मिल गया ना, वो बदला नहीं जाता।
0: ओ यार, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अड्डे तुसी एक तो सलीस हो जाते ना सारे।
1: अगर हो जाए तो, अगर रखा गया चेंज कर दिया जाए,
0: अगर मैं कह रहा हूँ अगर हो, अगर आपके बस में हो, अड्डे तुसी लकीर तो फकीर बन जाते सारे।
1: यानी अगर अगर रखना चाहे मुतबादल कोई।
0: हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करवा दें, मैं रेडियो के टॉपिक से रिलेटेड, ये दो घंटे में जो हम शुगर लगाएंगे ना उससे रिलेटेड है बस। मोहसन,
1: हाँ जी। अगर यूसुफ भाई एक गजल है नुसरत साहब की, अगर वो प्ले करते हैं आपके लिए, डेडिकेटेड है मेरे लिए।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं खुद को, मैं बाद में जब ऑफिस जाऊंगा ना, मैं फिर सुन लूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हाँ, वो लफ्ज मैंने पकड़ लिया था इनका, लेकिन अब क्या करें, अब समझना चाहिए लोगों को खुद से भी। और मज़ीद हम लोगों की पार्टिसिपेशन भी साथ से शामिल करेंगे, लेकिन सॉन्ग है जी बड़े ही खूबसूरत से इंसान के लिए, और वो इंसान जो है वो प्रोग्राम जब सुन रहा हो तो 4 से 5 से 6 से 7 चांद लग जाते हैं।

Imran from Sawabi, thank you so much yourself, bhai. Aur pura week aapke show ka intezar rehta hai. मैं आपका साइलेंट लिसनर हूँ और कोई पश्तो टपे जो हैं वो शामिल कर दें.

वैसे हर संडे के शो करने के बाद जब मॉर्निंग में सोचता हूँ ना कि ऑफिस भी जाना है, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट नाइट यहाँ से जाना पड़ता है घर। हमारे स्टाफ में एक लड़का ऐसा है, वो स्पेशली मुझे सुन रहा होता है, लेकिन अभी वो कराची गया था, शायद कि आप वापस आ गया होगा। कासिम अच्छा बच्चा है। फिर एक एक लफ्ज एक एक बात कहता है, ये जरा दोबारा बोल के बताए ना जरा, आपके मुंह से ये लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है।

जी मैं वरना एक शॉर्ट टाइम से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के बाद और आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स शामिल करेंगे। नाचीज को मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।

लोखी जी के नाम को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों के सुनने का जो हमें सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं। अच्छा ओके जी, facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे आप लोगों के कमेंट्स शामिल किए देते हैं। लाला मरशद मौजूद है जी, कहते हैं कि तैयबा या के फिर मैं कश्माला जो है वो रखती अपना नाम। नजीर खुशो मरशद मौजूद है सोहबतपुर बलोचिस्तान से। माजबीन मरशद मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम अर्ज यूसुफ। और मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा है, मुझे यही नाम पसंद है, यही रखती है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट्स। नजीर खुशगे नमाशद मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट का। रियाना खान, अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाना खान बखर से हैं, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। नहीं सैम ने कॉमेंट किया, नहीं देखें ऐसे ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट विशेस फॉर यू भाई, अल्लाह आपको सेहत और सलामती अदा करे, बहुत सारी कामयाबी अदा करे, थैंक यू सो मच जी। और बिल्कुल जी, आपने कमेंट किया है और सब कुछ चाहिए जी, अपने अपने जो मामलात हैं उनको बिल्कुल बेहतर रखें, बल्कि बेहतरीन रखें। आजकल आप नहीं कह सकते इस बारे में कुछ भी। मोहम्मद हफीज़ रहमान बखर से मास्टर मौजूद हैं, ईदगाह जनूबी बखर से मोहम्मद हफीज़ रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान मुल्तान से, गुल यासीन नाज, वेलकम टू द शो। इतने सारे नाम, वैसे ना पहले जब हम पढ़ा करते थे ना, जब लेटर्स आया करते थे तो एक ही लाइन में सारे नाम होते थे। हमद रमल खेल फ्रॉम क्वेटा, क्वेटा से हमें कमेंट किया जी हमद रमल खेल ने, वेलकम टू द शो। साजिदा सहू फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मरशद मौजूद है, खुशामदीद, टॉपिक पर मैं इसी नाम के साथ जाऊंगी, चेंज नहीं करना। खैर सती साहब बसंगी सुनने पे कासिम का आ गया जी मैसेज, कासिम नवाज हमें सुन रहे हैं जी, वापस हो गए हैं जी, आप आ गए हैं, मुड़ी अच्छी रही हो आला सती साहब। बस हम सुबह दफ्तर फतूर शुरू हो जैसी ना। काजिम नवाज कहते जी अस्सलाम, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने वैसे ही नाम ले लिया इसलिए।

ऑफिशियल facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे आप लोगों के कमेंट्स मैंने शामिल कर दिए हैं और मजीद देखेंगे जो भी गाहे बगाहे मुझे मौसूल होते रहे मैं शामिल करता रहूंगा।

0: म्यूजिक जो है वो बड़ा बॉम्बास्टिक किस्म का म्यूजिक है, तो मैंने कहा जरा इसको शामिल कर देते हैं। देखते हैं जी कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर टू टूट, अस्सलाम वालेकुम। ये तो जब ऐसे मस्तियां करते हैं ना आप लोग फिर बड़ा। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: यूसुफ भाई क्या हाल है?
0: शुक्र अल्लाह का, तारुफ करवा दें अपना।
1: मैंने मैसेज किया था आपको, अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर एक टॉपिक पे बात कर लूं?
0: जी जी, उसी पे करनी है, और हमने अदर क्या करना है।
1: नहीं, फिर एक फरमाइश भी करनी ना आपको।
0: फरमाइश ऐसी छाड़ देती हैं, होना सी ऑर्डर कर दें।
1: नहीं, आप शायरी पढ़ते हैं ना, तो एक गजल भी शामिल करें।
0: वो 11:30 के बाद शामिल करेंगे।
1: नहीं,
0: सिंगर
1: की सारे जहाँ को मुनव्वर करने वाला,
0: अच्छा
1: घेरने वाला, अच्छा नाम है। और अगर मुझे चेंज करना पड़े
0: जी,
1: तो मेरे के आइडियल है बॉक्सिंग के, हैवी वेट के, दफा वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं
0: मोहम्मद अली,
1: जो मुस्लिम थे।
0: जी जी जी।
1: तो मैं रखूंगा मोहम्मद अली, बड़ा प्यारा नाम है नबी सल्लम का और उनके दामाद का,
0: माशाल्लाह जी।
1: और धीमे लहजे में जब शायरी पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो अगर मुमकिन हो तो मुन्नी बेगम की आवाज में हसन अब्बास रजा की गजल है, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
0: ते कर रहा करो ना तुसी, तुहानू किन्ने के बाहर जाओ तुसी।
1: ये शायर का तखयल है।
0: अच्छा,
1: तो और सुने आपको मजा आएगा।
0: अच्छा जी, ठीक है
1: जी।
0: जी ठीक हो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह।
2: इमाम मोहम्मद शहजाद शाहबाग लाहौर से बात कर रहा हूँ जी।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: आपकी दुआएं माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छी बातें, तो हम दिल करता है आपसे बात करेगी।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है
2: जी। तो मैं अपना नाम जो मुझे मौका मिलता ना, मैं अपना नाम मौला जट रखता जी।
0: मौला जट रखता जी?
2: जी जी।
0: अच्छा अच्छा, सही है जी।
2: अगर तो आप जो आपने मौला जट सुनना हो, कल 1-3 वसीम साहब का प्रोग्राम होगा पंजाबी में।
0: अच्छा,
2: जो आपने मौला जट सुनना होगा तो 2 के बाद मैं आऊंगा, फिर आपको मौला जट सुनाऊंगा।
0: असि अपने आप तो तंग आए हैं आजकल दे। मैं थोड़ी अपना तलाक कढ़ाना है तेज होना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काफी सारी बैक टू बैक कॉल्स जो हैं वो लाहौर से हमें जो है वो आ रही हैं, और तेरा दीदार चना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तुझे नजदीक।

0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: अल्लाह का शुक्र आप सुनाए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? अगर आपके पास ऑप्शन होती तो अपना नाम क्या रखते आप?
1: नाम तो हम यही रखते हैं, खैर ठीक, जो भी रखे नाम सारे अच्छे होते हैं। बस यही होता है कि नाम के साथ असल चीज होती है काम अच्छा होना चाहिए।
0: नाम आपकी पहचान होती है।
1: वही ना, तो नाम ये होता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन
0: क्या
1: काम
0: मतलब गोभी का फूल रख देते हैं, आपका नाम क्या रखते हैं?
1: मैं समझता हूँ कि काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए नाम से ज्यादा।
0: तभी आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं।
1: नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, जनरल बात कर रहे हैं।
1: नाम तो सारे अच्छे होते हैं, मैं कह रहा हूँ।
0: अभी क्या नाम है आपका?
1: सलमान।
0: सलमान, सॉरी। अच्छा, पहले आपने बताया था।
1: इंशाल्लाह यही रखते हैं।
0: अच्छा, यही रखते हैं। माशाल्लाह जी, अच्छा नाम है ये भी।
1: ठीक है सर,
0: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऐसे अच्छे अच्छे कॉलर्स होने चाहिए ना। और वैसे भी आजकल हम सोच रहे हैं घर का, तो घर के हवाले से

0: सॉरी नहीं, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बात करें जी। अब आ रही है? अच्छा जी, नसीम गोलड़ा शरीफ से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: मुझे अपना नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
0: नहीं अच्छा लगता?
1: नहीं अच्छा नहीं लगता।
0: क्यों?
1: पता नहीं क्यों मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपनी मम्मी से कहते थे क्यों रखा है, तो कहते हैं कि आप चेंज कर लो।
0: हाँ,
1: तो
0: उस वक्त खत्म हो गया था।
1: अब कौन बुलाएगा, कहती थी कि मैं खुद बुलाऊंगी।
0: अच्छा,
1: तो मुझे अगर मौका मिलता तो मैं ज़ारा नाम रखती या ईमान रखती।
0: अच्छा, ठीक हो गया, सही
1: ये नाम पसंद है।
0: अच्छा ठीक हो गया।
1: ओके
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।

कुछ हमको हम 90s के झरोखों में लेके जाएंगे और तब तक के बहुत हिट सॉन्ग्स और तब कम ही सिंगर हुआ करते थे, है ना? ऐसे में टिप्स पे याद थे।

ग्यारह बजकर 30 मिनट वहाँ से आते हैं और वेलकम करेंगे जी आपको स्पेशल सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ। और मैं मोहम्मद यूसुफ आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहूँगा।

कि तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, हालांकि मौजज़ों का जमाना तो है नहीं। इस घर में उसके नाम का कमरा आज भी है, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। मैं तेरा हूं, तेरी मर्जी मुझे जैसा कर दे, तेरा बीमार हूं अजलों से, ना मर जाऊं कहीं, एक नजर देख ले मुझको, मुझे अच्छा कर दे।

जी एक रिक्वेस्ट थी कि आप एक कलाम शामिल किया करते थे, उसको अगर आप शामिल कर दें, वो पंजाबी का कलाम, और कोशिश करता हूँ। कर लें दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, कर लें दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो के लेना तेनू यार चाहिदा। यार याद रहे हर दम भुल जान दा की कम, मनिए याद दवारे छाती पाण दा की कम, सिर नूं चकाना एक वार चाहिदा। कर लै दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। चार चफेरे कानू टकरा मार दें, जितियां होइयां बाजियां कानू हार दें। कहिंदे कि बंदे को सब कुछ होंदा है, फिर भी वो चाहुंदा है कि सब कुछ मेरे को आ जाए। ये कहिंदा कि चार चफेरे कानू टकरा मार दें, जितियां होइयां बाजियां कानू हार दें। वेख ले सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां वो करतूतां वेख के हसदा। करे गवाच चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच। तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, घर विच बैठा कर लै जलवा दूर दा। कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लब्दा। गौर ता करके वेख अकल दिया अन्या, कुदरत वेखी फिर भी रब ना मनिया। रख मिट्टी दिया बाविया तू गौर करके, तेरी केड़ी जगह ते तेरा खमीर जाना। जिन्हों नित चिंगार दा फिर मोरख, रल खाक च तेरा शरीर जाना। ओथे नहीं होना किसी दा भी लिहाज, ओथे ही बादशाह ओथे ही फकीर जाना। खाली हथ तू आया सी जग अंदर, खाली हथ तू यारा अखीर जाना। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा।

और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड होती हैं। मैं लास्ट टाइम भी एक ऐसी कुछ शायद बात मैंने आपसे शेयर की थी। क्या आपकी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छे लोग हैं जिनसे एक उनसियत का रिश्ता है, एक अपनाइयत का रिश्ता है, और ये फीलिंग्स कोई नॉर्मल फीलिंग्स नहीं होती हैं कि इंसान कहे कि सिर्फ किसी का अच्छा लग जाना।

कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, दिल चाहता है ये जो पल है जिनमें तुम हो मैं हूँ, एहसास है, प्यार है, ख्याल है, तवज्जो है, दीवानगी है, जुनून है, तड़प है, इंतजार है। हर मौसम में बहार है, ये जो कुछ भी है तुम्हारे मेरे दरमियान। ये सब मेरी रूह में कैद हो जाए कि मैं तुमसे आज ये कहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कहो तुम भी, मोहब्बत है। यही बस धड़कन थम जाए, यही बस वक्त रुक जाए। कहो मुझसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। समिन, अब बहुत नजदीक है आप लोगों से इजाजत लेने का। इस दुआ इस यकीन के साथ आप लोगों से इजाजत चाहेंगे कि हर आने वाला कल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। अगर जाने अनजाने में कोई भी बात आपको नागवार गुजरी हो, आपके समक्ष खराशी का सबब बनी हो, तो माज़ूर चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन ये मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी हो, फुली एक नए अज़म के साथ और भूले नहीं होंगे आप। Let's prove it. ये आपने साबित करके दिखाना, you don't have a short memory. तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है ये तन्हाई, ये न मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें। अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना, मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से अदावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

तो सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। तो सितारों से बहुत दूर है मैं जानता हूं, अपनी मखलूक से मस्तूर है मैं जानता हूं, लेकिन लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूं, मैं शनासा हूं तेरा, मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहूम सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब, तेरी पर्दा नशीनी की कसम, तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुझे देखा है। मैंने अशकों की कतारों में तुझे देखा है।

टेलीफोन कॉल्स होंगी आपकी, एसएमएस होंगे और फेसबुक पर आपकी शिरकत होगी जनाब। एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 लिखना है, यानी 101 और एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 पर भेज देना है।

facebook.com/fm101channelpakistan वेब एड्रेस है फेसबुक पर एफ एम 101 पाकिस्तान के ऑफिशियल फैन पेज का, जिस पर एक स्टेटस अपडेट हो जाएगा अभी कुछ देर में। वहां पर आपके कमेंट्स जो होंगे उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और जनाब 9202540 पर आपके टेलीफोन कॉल्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी का सिटी कोड 051।

उफक के उस तरफ कहते हैं एक रंगीन वादी है, उफक के उस तरफ कहते हैं एक रंगीन वादी है, वहां वहां रंगीनियां कोहसार के दामन में सोती हैं, गुलों की निकटें हर चार सू आवारा होती हैं, गुलों की निकटें हर चार सू आवारा होती हैं। उफक के उस तरफ कहते हैं एक रंगीन वादी है, वहां रंगीनियां कोहसार के दामन में सोती हैं, गुलों की निकटें हर चार सू आवारा होती हैं, वहां नगमे सबा की नर्म रो मौजों में बहते हैं, वहां आबे रवा में मस्तियों के रक्स रहते हैं, वहां है एक दुनियाए तरन्नुम आबशारों में, वहां तकसीम होता है तबस्सुम लालाजारों में, सुनहरी चांद की किरणें वहां रातों को आती हैं, वहां परियां मोहब्बत के खुदा के गीत गाती हैं, किनारे आप हुस्नो इश्क बाहम सैर करते हैं, किनारे आप हुस्नो इश्क बाहम सैर करते हैं, गई गुजरी गलत फहमी का जिक्र खैर करते हैं, वहां के रहने वालों को गुनाह करना नहीं आता, जलीलो मुब्तसिल जज्बात से डरना नहीं आता, वहां अहले मोहब्बत का ना कोई नाम धुरता है, वहां अहले मोहब्बत पर ना कोई रश्क करता है, मोहब्बत करने वालों को वहां रुसवा नहीं करते, मोहब्बत करने वालों का वहां चर्चा नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं तंग आकर, हम अक्सर सोचते हैं तंग आकर कहीं चल दें, कहीं चल दें मेरी जान ऐ मेरे ख्वाबों की दुनिया, चल वहीं चल दें मेरी जान ऐ मेरे ख्वाबों की दुनिया, चल चल वहीं चल दें उफक के उस तरफ, उस तरफ कहते हैं एक रंगीन वादी है।

12:25 हुआ चाहते हैं तकरीबन, और टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं 920-2540-9202540 इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051। और वो सामीन जो मेरे जैसे बंदे को भी ये कहते हैं कि ज़रा नंबर आराम से बताया करें, उनके लिए 920-2540। तो जनाब ये डायल करके 051 का आपने सिटी कोड लगा लेना है, पहले प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं अगर आप चाहें। कोई अच्छी बात, कोई खूबसूरत बात, कोई ऐसी बात जिससे किसी का कोई भला हो सके, कोई अच्छा शेर, कोई अच्छी नज्म जो समातों में रस घोल दे, ऐसा कुछ। जब दूर फक पर लाली हो, जब शाम उदासी वाली हो, जब जब्त का बंधन टूटा हो, जब आस का दामन छूटा हो, जब दर्शन प्यास बुझाते हो, जब मौसम गीत सुनाते हो, जब कान तरसे बातों को, जब नींद ना आए रातों को, जब आंखों को जगराते हो, जब अपने दर्द सताते हो, तब याद बहुत तुम आते हो।

और ये यादें जो हमारे साथ साथ रहा करती हैं, कभी हम इनसे जान छुड़ा नहीं सकते। हर गुजरता पल, हर गुजरता लम्हा हमारा माजी बनता चला जाता है और एक याद बनता चला जाता है। वो याद जो हम अपने साथ साथ रखते हैं, रखते सफर के तौर पर इस जिंदगी के, जीस्त के सफर में। अगर गौर करें तो खाली हाथ आया ये इंसान इस दुनिया में, बहुत कुछ इकट्ठा करता चला जाता है, बहुत कुछ समेटता चला जाता है, जिसमें ये दुनिया का साजो सामान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अपने तखय्युल में बहुत कुछ होता है। अक्सर कहा करता हूँ, हम इंसानों के अंदर एक कमरा होता है जिसको एक वक्त आने पर हम लोग खंडर बना दिया करते हैं, या वो खुद ही खंडर बन जाता है, लेकिन हम ऐसा ज़रूर करते हैं कि उस एक कमरे को मुख्तस कर दिया करते हैं। वो बहुत ख़ास हुआ करता है जो इस दुनिया की बाग दौड़ में मुकफ्फल रहता है। हमारे पास उसकी चाबी होती है, लेकिन कभी खोलते नहीं हैं उसको, हत्ता कि कोई ऐसा वक्त हमें मयस्सर आ जाए जब हम इंतहाई मुजमहिल हों, तब उस कमरे के किवाड़ खोलते हैं और वहाँ इकट्ठा किया गया सामान, ऐसा बहुत सा सामान जिसको छुआ नहीं जा सकता। उसकी दीवारों पर मुनक्कश बहुत से जुमले, बहुत से लहजे, वहाँ कहीं कोई मौसीकी धरी होती है, कोई खुशबू होती है जिससे कभी फजाएं मुअत्तर हुआ करती थी, कोई अशार हुआ करते हैं, कोई गजलें हुआ करती हैं, कुछ सूखे फूल हुआ करते हैं, कुछ आंसू हुआ करते हैं, कोई मुस्कान हुआ करती है, कोई एक झलक हुआ करती है, कोई एक मुस्कान हुआ करती है, कोई एक लम्स हुआ करता है। पटारी खोलते हैं और इस सारे सामान को जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको छूते हैं, छूकर महसूस करते हैं, अपने माजी में जाने की काविश करते हैं, अपने तखय्युल के जोर पर अपने माजी को जिंदा करने की काविश करते हैं।

वो माजी जब बहुत सी काविशें, बहुत सी कोशिशें हुआ करती थी। कैसी जिस्त है इंसान की, कैसी जिंदगी है, ये तसव्वुर और ये तखय्युल कुछ भी फर्ज कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। लेकिन कुछ ऐसा जो बीत चुका हो उसको मिटा नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, वो मफकूद नहीं हो पाता। फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो ये जी की विपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, और फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो, फर्ज करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फर्ज करो ये जोग बजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। देख मेरी जा कह गए बाहू कौन दिलों की जाने हूँ, बस्ती बस्ती सहरा सहरा लाखों करे दवाने हूँ, जोगी भी जो नगर नगर में मारे मारे फिरते हैं, कासा लिए बबूत रमाए सबके दवारे फिरते हैं, और शायर शायर भी जो मीठी बानी बोल के मन को हरते हैं, बंजारे जो ऊंचे दामों जी के सौदे करते हैं, उनमें सुच्चे मोती भी हैं, उनमें कंकर पत्थर भी, उनमें अथले पानी भी हैं, उनमें गहरे सागर भी। गोरी देख के आगे बढ़ना, गोरी देख के आगे बढ़ना, सबका झूठा सच्चा हूँ। डूबने वाली डूब गई वो, घड़ा था जिसका कच्चा हूँ।

Cihan Cenab-ı Esa insan और ऐसा उसका तसव्वुर, ऐसी उसकी कहानियां और ऐसी उसकी यादें, उसका जहन और उस जहन में बहुत कुछ मुनक्कश। पता है जब हम चेहरों को देखते हैं तो उनके खदोखाल में बड़ी खास बात पाई जाती है, और दर हकीकत वो खास बात उन खदोखाल में नहीं, उस नजर में पाई जाती है जो नजर देख रही होती है। अक्सर सुनते हैं ना कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। तो बस आंखें जिन मनाजिर से खीरा हुआ करती हैं और जो मनाजिर भा जाते हैं हम इंसानों को, वही मनाजिर हुआ करते हैं जो कोई कयामत बरपा कर दिया करते हैं हमारी जिंदगी में, जो हमारे वजूद के अंदर के उस एक मुख्तस कमरे को, जिसको हम इंसान अपनी मर्जी से सजाना चाहते हैं, शायद वही उसको खंडर बना दिया करते हैं। शराबों के पीछे भागता इंसान तलाश में हुआ करता है, आगाज भी आज तलाश से हुआ, और आज क्या ये तलाश तो हमेशा से जारी है। और ये तिश्नगी है कि मिटती ही नहीं है, और मिटे भी कैसे। अब वो आंखों के शगुफे हैं न चेहरों के गुलाब, अब वो आंखों के शगुफे हैं न चेहरों के गुलाब, एक मनहूस उदासी है कि मिटती ही नहीं, एक मनहूस उदासी है कि मिटती ही नहीं। इतनी बेरंग है अब रंग की खूगर आंखें, जैसे उस शहर तमन्ना से कोई रब्त ना था, जैसे देखा था शराब। देख लेता हूं अगर कोई शनासा चेहरा एक लम्हे को, उसे देख के रुक जाता हूं। देख लेता हूं अगर कोई शनासा चेहरा एक लम्हे को, उसे देख के रुक जाता हूं। सोचता हूं कि बढ़ूं और कोई बात करूं, उससे तजदीदे मुलाकात करूं, लेकिन उस शख्स की मानूस गुरेजा नजरें मुझको एहसास दिलाती हैं कि अब उसके लिए मैं भी अनजान हूं, मैं भी अनजान हूं, एक आम तमाशाई हूं, राह चलते उन दूसरे लोगों की तरह मैं भी अनजान हूं, एक आम तमाशाई हूं, राह चलते हुए इन दूसरे लोगों की तरह। अब वो आंखों के शगुफे हैं ना चेहरों के गुलाब, एक मनहूस उदासी है कि मिटती ही नहीं।

हालते हाल मैं क्या रो के सुनाऊं तुझको, हालते हाल मैं क्या रो के सुनाऊं तुझको, तू नजर आए तो पलकों पे बिठाऊं तुझको, खुद को इस होश में मदहोश बनाने के लिए आयते हुस्न पढ़ूं देखता जाऊं तुझको, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको, कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, कर लिया एक मोहब्बत पे गुजारा मैंने, चाहता था कि मैं पूरा भी तो आऊं तुझको, और अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है, अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको, और क्यों किसी और की आंखों का कसीदा लिखूं, क्यों किसी और की मिदहत से जलाऊं तुझको, ऐन मुमकिन है तेरे इश्क में जम हो जाऊं और फिर ध्यान की जन्नत में न लाऊं तुझको। उसने एक बार मुझे प्यार से बोला था सईद, मेरा दिल है कभी सीने से लगाऊं तुझको, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको।

0: आतिर अली सैयद कहते हैं मुझे, और प्रोग्राम मुसाफते शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लाम आबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समातों की नज़र कर रहा हूँ। हुआ चाहते हैं 12:45 और अब वापस आऊँ तो आपकी टेलीफोन कॉल्स की जानिब बढ़ूँगा। तो शामिल करते हैं जनाब पहले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। आतिर कैसे हैं? मैं कराची से परवीन आसिफ बोल रही हूँ।
0: मैं बहुत
1: पहले आपको एक बात बताऊं कि आपकी आवाज़ ऑन एयर बहुत ज़्यादा कम आ रही है।
0: अच्छा।
1: हाँ बहुत ज़्यादा कम, मुझे हैरत हो रही है। आपके टीम के और लोग भी होंगे, किसी ने बताया नहीं आपको?
0: यहाँ पे प्रोग्राम
1: जी,
0: मेरा प्रोग्राम जो है वो ड्यूटी ऑफिसर जिशान भी सुन रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आवाज़ उन तक बेहतर जा रही है, शायद कोई प्रॉब्लम हो।
1: बहुत ज्यादा कम, शुरू से जब आपने शुरू किया है प्रोग्राम,
0: अच्छा,
1: उस वक्त से यही हाल है।
0: चले।
1: जो आपकी खुजली वजह लगाई है आपने, उसके तो लिरिक्स समझ में ही नहीं आ रहे थे कि है क्या।
0: अच्छा।
1: आपकी आवाज़ तो बिल्कुल कान से लगा के सुन रहा, फुल वॉल्यूम पे
0: बस
1: इतनी फिर कम आ रही है कि जिसकी
0: आपने फिर बहुत कुछ मिस कर दिया आज। चले कोई बात नहीं।
1: नहीं मिस नहीं किया, मैं कान लगा के सुनती तो नहीं हूँ।
0: अच्छा।
1: लेकिन ये क्या आपकी गजल और
0: पंखा बंद कर देता, आपको सुनाई देता सही। अच्छा चले, खैर क्या कहेंगी आप
1: जी? मैं आप यही कहूंगी कि प्रोग्राम तो हमेशा की तरह अच्छा, और उम्मीद यही थी और यकीनन बल्कि पक्की पक्की उम्मीद थी कि आप आएंगे जरूर, क्योंकि जो मैं ख्वाब हो गए थे। लेकिन बहरहाल उस दिन भी बहुत अच्छा लग रहा और आज भी आपका तो प्रोग्राम होता ही अच्छा है, इसीलिए तो मैं जागती हूँ, इंतजार करती हूँ आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आप लेके आते हैं नज़्में और उसमें बहुत प्यारी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और मौसीकी में भी आपको बहुत अच्छा है टेस्ट, तो मैं आपको सुनाती हूँ एक
0: जी।
1: अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म गिर
0: दिलगिर दिलगिर,
1: चांद रातों की नर्म दिलगिर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना, अगर वो नकले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस प्यारा था मेरे दिल का, अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है, मगर ये मुमकिन है किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें चाहे न टूटे वो अपनी हस्ती न भूल जाए, अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मैं गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा, अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, खूबसूरत तरीन बात, तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा, कहीं ये रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ, हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ, तो अपने हाथों से इन पतंगों की राख दरिया में डाल देना। बहुत ही हसीन आतरी, इनके 4-5 मिसरे जो है।
0: हाँ।
1: अच्छा, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, किसी अनदेखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा, समंदरों के सफर पे निकलो
0: तो उस जजीरे पे भी उतरना,
1: समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। इसी दिल की आवाज है उनकी, अमजद साहब की, वाकई बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा चले ये सुनाते, लेकिन आप प्लीज अपनी आवाज से करवाए जरा, जो बड़ा इसमें मजा में खलल पड़ रहा है।
0: वो मुझे वैसे इशारा भी दे चुके हैं कि आवाज ठीक आ रही है, आप अपनी तरफ कुछ देखिएगा, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो।
1: मेरी तरफ तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया,
0: चले किसी और कॉलर से भी।
1: लाहौर भी मैंने लगा के देखा ना, वहाँ से भी बहुत कम आ रही है।
0: अच्छा,
1: आपके से भी कम है, वरना किसी एक जगह से अच्छी आ रही होती बेहतर।
0: अच्छा अच्छा,
1: चले देख लीजिए, अल्लाह मालिक की बात मेरी तो आपसे हो गई, खुश रहे, आबाद रहे,
0: आबाद रहे,
1: सब सुनने वाले बहुत अच्छे रहे, सबको मेरा सलाम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम, खैरियत से घर पहुँचिएगा।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी।
2: हेलो भाई,
0: मैं बहुत अच्छा हूँ जी, कौन है कहाँ से?
2: सुबह बात कर रही हूँ।
0: ठीक है, आप ठीक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: आपको मेरी आवाज रेडियो पे ठीक आ रही है?
2: बिल्कुल सही आ रही है, वो उनके मसला होगा प्रवीणा के केस में,
0: ठीक है,
2: बिल्कुल सही शुरू से पहली दफा वो जो आपने अल्लाह ताला के शान में पढ़ा था वो आप अक्सर पढ़ते हैं जो, तो उस वक्त से सुन रही हैं, बिल्कुल सही आ रही है आवाज आपकी।
0: चले बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे,
2: क्या सुनेंगे,
0: क्या क्या दोबारा बोले,
2: मैं कह रही क्या सुनेंगे,
0: आप जो सुना दें।
2: अच्छा मेरे बस में होता हटा कर चांद तारों को, नीले आसमान पर बस तेरी आंखें बना देती, मेरे बस में होता हटा कर चांद तारों को, नीले आसमान पर बस तेरी आंखें बना देता, शजर होता तो लिख कर नाम पत्तों पर तेरे शहर की जानिब हवाओं में उड़ा देता।
0: अच्छा बहुत अच्छा,
2: बस इतना ही आता।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा ख्याल है। और कुछ कहना चाहेंगे?
2: और माशाल्लाह से अच्छा शो हो रहा है।
0: ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए, और क्या बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए।
2: जी जी,
0: मैंने कहा अपनी बात पूरी कीजिए।
2: अच्छा अगर माशाल्लाह से शो बहुत ही प्यारा होता है, तो मैं तो ये कहने वाली थी प्रवीण आप ही से इस बारे में पूछना चाहती थी कि जो अल्फाज आप बोलते हैं इतने, यानी के बाकी भी लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश के इतने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपके अल्फाज होते हैं ना वो हालांकि होते भी अरबी के लफ्ज हैं, लेकिन वो इतने अच्छे लगते हैं। एक तो नबी अलैहि सलाम की जुबान है, उसके अलावा वैसे हम आम तौर पे सोचें तो वो अरबी के जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, यानी के
0: ठीक है
2: मुकाबले में, इंग्लिश के मुकाबले में लोग इंग्लिश को तरजीह देते हैं, तो हालांकि इसे देनी चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ये आपने परवीन अभी को क्यों कहा है खास तौर पे?
2: जी
0: कुछ नहीं, सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया।
2: मैंने आपको बोला था ना आप माशाल्लाह अरबों वाली शायरी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ ठीक,
2: इस बारे में पता हो मालूम हो अरबों वाली शायरी क्या होती तो कोई समझ सकता है इस चीज को।
0: ठीक है, अच्छा चलें, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज,
2: ख्याल रखिएगा अपना,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक और कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: सर मैं सनम कियानी बात कर रही हूँ।
0: दोबारा नाम बताइए।
3: सनम कियानी।
0: सनम कियानी।
3: जी जी।
0: ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है
3: जी जी, ठीक ठाक।
0: क्या कहेंगे? जी फरमाइए, क्या कहेंगे?
3: जी मैं एक प्रवीण शाकिर की एक नज़्म है, वो शामिल करना चाहती
0: हूँ। सुनाइए सुनाइए।
3: कमाले जब को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सपोर्ट करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊंगी, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों से मुस्कुराऊंगी,
0: वो एक
3: रिश्ता बेनाम भी नहीं, लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी, बिछा दिया गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठेगा तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी,
0: हमारे
3: जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी,
0: समातों में घने जंगलों की सांसें हैं, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन ना पाऊंगी। मैंने एक शेर ऐड किया
3: मैंने
0: आपने बहुत सारे खाए हैं, मैंने एक ऐड किया चले, लेकिन वो आपको सत्ता
3: था रही होगी उसको, वो मैं शामिल करके मैंने पहले भी एक दफा आपके शो में कॉल की है।
0: अच्छा,
3: तो मैंने यही बताया था कि जो मुझे पसंद होगा वो मैं सुनाऊंगी।
0: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप वही सुनाएं। मैंने तो वैसे ही मुझे मैं इस चीज पे हंसा कि आपको क्या हो गया, मैंने शेर सुनाया तो वो खामोशी होगी बिल्कुल आगे से। चले
3: नहीं, मैं
0: खैर,
3: सुन रही हूँ आपको, बहुत प्यारी आपकी आवाज भी है और आप पढ़ने भी
0: बस
3: बहुत प्यारे हैं। हम तो खा के हमें इतनी समझ भी नहीं है कि नजम है गजल है क्या है, लेकिन अच्छी जो चीज लगती है वो दिल करता है कि आपके प्रोग्राम में शामिल करूँ।
0: बस यही सुनने के लिए मैं ये सारे काम करता हूँ। चले सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे, बहुत शुक्रिया,
3: बहुत
0: शुक्रिया,
3: बहुत शुक्रिया,
0: ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। एक कॉल और लूंगा जनाब, उसके बाद गुफ्तगू की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है,
0: बहुत अच्छा हूँ। हुजूर कौन है, कहाँ से?
4: मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: इस्लामाबाद से कौन?
4: आमिर बात कर रहा
0: हूँ। आमिर, आमिर कैसे हैं आप? ठीक है,
4: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या
4: फरमाएं, बड़ा एहसान है। छोटा सा नजराना पेश करना चाहूंगा।
0: जी जरूर।
4: मुखालिफ की होती है बड़ी बेटंगी सी गुफ्ताग।
0: अच्छा,
4: मुखालिफ की होती है बड़ी बेटंगी सी गुफ्ताग, वो क्या जाने के नूरे हक की होती है क्या रफ्तार।
0: बहुत अच्छा।
4: नजर जब पड़ती है शीशे पे तो होती है फौरन पार, निकले ऐसे कि मंजिल मकसूद का पता ना चला, लेकिन तेरे कर्म ने पुकारा इधर तो आ।
0: बहुत अच्छा।
4: देता हूँ ये सदा कि उनसे नैन मिला कर देखो, उनसे नैन
0: मिला
4: ला कर
0: देखो,
4: देखो ये धोखा भी खा कर देखो।
0: बहुत अच्छा।
4: दूरी दूरी में क्या रखा है, दूरी में क्या रखा है, इसकी खोज लगा कर देखो,
0: लगा कर देखो। ठीक है,
4: टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं।
0: खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया।
4: सुनने वालों को मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल हा साल तक चली है, कई जमानों में बट गई है। जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल हा साल तक चली है, कई जमानों में बट गई है। मैं उन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी मुबालगा है, भला तुम्हारी जुदाई का दुख जमा मकान को हिला रहा है। भला रिलेटिविटी की साइंस किसी के मुड़ने से मुंसलिक है, उन्हें बताओ तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था और उसकी थ्योरी के काले गढ़े जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना था वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी आंखों में गड़ गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ही एक 80 के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था। तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था। तुम्हारे हाथों का लम्स हाथों को मिल रहा था तो देखता था हमारे हाथों के एटमों की दफा की कुव्वत कशिश में कैसे बदल रही है। पर अब तुम्हारी नजर कहीं है, तुम्हारा लहजा भी अब नहीं है, तो तुम बताओ मैं किस तरीके से अपनी हस्ती को नेस्ती से जुदा करूंगा। मैं दंग आंखों से सारी दुनिया को देखता हूं और अपने होने की कोई इल्लत तलाशता हूं। अजीब तरह का बेनिशान बेमकाम दुख है। समझने वाले समझ गए थे ये रायगानी है, रायगानी तमाम सदियों का खाम दुख है। मैं अब हकीकत समझ रहा हूं, तमाम दुख था तमाम दुख है। तुम्हें बताऊं किसी के होने का कोई मकसद कोई मानी कहीं नहीं है। अगर तो नच्छे नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पर रह के, पले बढ़ेंगे बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे और इस जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सबके सब भी यही करेंगे, लड़े मरेंगे पले बढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये क्या तमाशा हाय हू है, ये क्या तमाशा है हाय हू है, ये जिंदगी है तो अख्तू है। इसी कराहत के साथ कितने जमा गुजारू मैं किस मुरवत में रायगानी का दुख गले से लगा रखूं। तुम्हें बताऊं कि ये अजियत भी बेपनाह है, मैं किस मरवत में रायगानी का दुख गले से लगाए रखूं। तुम्हें बताऊं कि ये अजियत भी बेपनाह है, मैं ऐसी हालत में जिस जगह जितने दिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं।

जी हजूर, ऐसा नुकसान हम इंसानों की जिंदगी में बहुत कुछ बर्बाद होता रहता है, बहुत कुछ गुजरता है, बहुत कुछ हम सह लिया करते हैं, अक्सर वो भी सह लिया करते हैं जिसका तस्वीर भी नहीं कर सकते थे कभी। लेकिन कोई कमी ऐसी होती है जो कभी कभी पूरी हो नहीं सकती, उसका मुतबादिल कुछ होता नहीं है, या यूं कहिए कि हमारी जिंदगी में बहुत सी जगहें होती हैं जहां हम बहुत कुछ रखते चले जाते हैं, वो जो हमारे तखय्युल की दुनिया में हम एक कमरा सजाते हैं ना, जहां हम अपनी मर्जी के कालीन डालते हैं, अपनी मर्जी के पर्दे रखते हैं, हमारी मर्जी का गुलदान होता है, उसमें हमारी पसंद के फूल होते हैं, वो फानूस भी हमारी मर्जी का होता है, उसमें कुमकुमे भी हमारी पसंद के हुआ करते हैं, वहां वो सोफा और उस सोफे का साइड टेबल, वहां एक डेकोरेशन पीस क्रिस्टल का, उस कमरे की दीवारों का रंग और उसकी छत का रंग, उस कालीन का रंग, हर शय हमारी मर्जी की हुआ करती है और शायद हम उसमें रद्दो बदल गवारा नहीं कर सकते। वो गुलदान अगर टूट जाए तो उस गुलदान की जगह कोई और गुलदान हमसे रखा नहीं जाता। हम उन सोफों की जगहों को बदलना नहीं चाहते, उन दीवारों के रंगों को बदलना नहीं चाहते। वो फानूस हमें इतना भाता है कि हमें उससे एक उनसियत हो जाती है और हम उसी की रोशनी में बैठना चाहते हैं। हर शय हमारी मर्जी की हुआ करती है। और ये बात कमरे के बारे में थी नहीं, हमारी जिंदगी में हमारी मर्जी का वो कमरा और हमारी ये पूरी जिंदगी, ऐसे ही हुआ करते हैं हम इंसान। मौके बहुत से होते हैं, जगहें बहुत सी होती हैं, लोग बहुत से होते हैं, लेकिन कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई, वो क्या है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में, क्या जगह बहुत सी हुआ करती हैं लेकिन एक जगह किसी दूसरे को दे नहीं पाते। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और ऐसे वजद में भूल जाया करता हूं अक्सर के कहां से आगाज हुआ करता था, कहां से आगाज हुआ था। इंसान है बहुत अजीब है और सबसे अजीब ये जहन, और जहन में मुनक्कश नकुश जो कि बस माजी हुआ करता है, हमारे जहन में ये माजी रह जाता है, हर गुजरता लम्हा और कुछ लम्हे हावी हो जाया करते हैं जहन में, जिनको हम मिटा नहीं पाते हैं, मिटाना चाहते नहीं हैं, कभी उस दर्द को महसूस भी करना चाहते हैं। जो होता तो तकलीफ दे है लेकिन न जाने क्यों हमें भा रहा होता है, उसका एक सुरूर हुआ करता है, हम उस दर्द से भी हंस उठाते हैं। पिजायाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। लेकिन दर्द जब हद से बढ़ा, जब्त का यारा न रहा, उनकी एक एक अदा याद मुझे आई है। कभी कभी अपने पे काबू रहता नहीं है इंसान का, जब्त का दामन छूट जाता है और यह खुद को मनवाने वाला इंसान जितना मजबूत बनता है, जितना मजबूत बनता चला जाता है,
उतना ही टूटने लग जाता है, चाहे चंद लम्हों के लिए ही सही। अपना कसूर तलाशता हुआ इंसान अपनी गलती ढूंढता हुआ इंसान

तलाश जिसकी थी मुझे वो हम नवा न मिल सका। मेरी वो मंजिलें जिन्हें के रास्ता न मिल सका। तलाश जिसकी थी मुझे वो हम नवा न मिल सका। मेरी वो मंजिलें जिन्हें के रास्ता न मिल सका। मैं किस निगाहे नाज में, मैं किसके था ख्याल में, मैं किस जहां में गुम हुआ मुझे पता ना मिल सका। मुझे पता ना मिल सका। वो रात की इबादतें, वो उम्र की मुसाफतें, गई वो सब के रायगा, मुझे मुझे खुदा ना मिल सका। मेरा शहर उजड़ गया, मेरा हर रंग बिखर गया। जो छोड़ के चला गया वो बेवफा ना मिल सका। मैं दर्द की प्यास था, मैं खुद से ही उदास था। हुआ जो मुझसे आशना वो आशना ना मिल सका। और ये नक्श ही बिगड़ गए, ये बाल के बिखर गए। ये नक्श ही बिगड़ गए, ये बाल के बिखर गए। वो जिसकी आस थी मुझे वो आईना ना मिल सका। वो जिसकी आस थी मुझे वो आईना न मिल सका। मैं जिसके था गुमान में, वो इंतजार जिसका था, ये उम्र के गुजर गई वो दिल रुबा न मिल सका।

हम क्या प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, हम के अब प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, यम्बयम आब पुकारे भी नहीं आएंगे। रायगानी का वो आलम है कि यूं लगता है मेरे हिस्से में खसारे भी नहीं आएंगे। और इतनी बेजार हैं आंखें कि खुदा जानता है हमको अब इतनी बेजार है आंखें कि खुदा जानता है हमको अब ख्वाब तुम्हारे भी नहीं आएंगे। हालत असल में लगता है खदो खाल मेरे अब तेरा जंग उतारे भी नहीं आएंगे। कोई गिरदाब नहीं आएगा दौरान सफर और सितम ये है किनारे भी नहीं आएंगे। कोई गिरदाब नहीं आएगा दौरान सफर और सितम ये है किनारे भी नहीं आएंगे। ऐसे छोड़ेंगे तेरा शहर के हम उसकी तरफ गर्दिशे वक्त के मारे भी नहीं आएंगे। ऐसे छोड़ेंगे तेरा शहर कि हम उसकी तरफ गर्दिशे वक्त के मारे भी नहीं आएंगे। रायगानी का वो आलम है कि यूं लगता है मेरे हिस्से में खसारे भी नहीं आएंगे।

और एक खूबसूरत शेर याद आ रहा है, एक खूबसूरत शायर जो इसी हफ्ते हमसे जुदा हुए, फखर अब्बास। रब ताला उन्हें गरीके रहमत करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। कहते हैं कि गजलें लिख लिख पागल होने वाला हूं, झूठ नहीं अब सच में रोने वाला हूं। गजलें लिख लिख पागल होने वाला हूं, झूठ नहीं अब सच में रोने वाला हूं। कागज के ये फूल महकते थोड़ी हैं, मैं लफ्जों के हार पे रोने वाला हूं, मैं लफ्जों के हार पे रोने वाला हूं। ये वो नुकसान होता है जिसकी कोई भराई नहीं हो सकती है, और इतना है कि हमारी यादों में जिंदा रहते हैं और आपके अशआर, आपकी गजलें, आपकी नज़में हमेशा हमें याद रहेंगी। ले ओ यार हवाले रब दे, मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा फ़खर अब्बास के लिए, रब ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करें। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल। मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, 12:00 तकरीबन हुआ चाहते हैं 21 मिनट। मेरे और आपके बीच में राबते के चंद जराए, पैगाम भेजिएगा 4471 पर, शामिल कम करता हूँ, आप भेजते भी कम हैं शायद इसलिए तवज्जो उस तरफ जा नहीं पाती है, लेकिन आज ज़रूर जाऊँगा और आपके पैगाम शामिल करूँगा। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 लिखना है, एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 यानी 4471 पर भेज देना है। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान वेब एड्रेस है। फेसबुक पर FM 101 पाकिस्तान के ऑफिशियल फैन

0: पेज का स्टेटस अपडेटेड है जनाब, मेरी एक तस्वीर के साथ और मेरा नाम आतिर अली सैयद। उस पर आप कमेंट करें, शामिल कर लूंगा प्रोग्राम में। और आपकी टेलीफोन कॉल्स 9202540920254 रावलपिंडी इस्लामाबाद का सिटी कोड 05। एक कॉलर को शामिल करते हैं लेकिन ड्रॉप हो गया, दोबारा कोशिश कीजिएगा। एक और कॉल है जनाब, ये शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सैयद।
0: कौन है जनाब, कौन है, कहाँ से?
1: जी मैं अफजल जावेद बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद।
0: ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है,
1: अल्लाह का करम शाह जी।
0: क्या फरमाएंगे?
1: सब कुछ करे, सब कुछ भरे, प्यार से आप कालत को डील करते हैं, बात करते हैं।
0: क्या थोड़ा सा हजूर, आपकी बात थोड़ी समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा।
1: जिस तरह आप शफ़क़त भरे प्यार से आप पालक से बात करते हैं।
0: जी जी जी जी जी जी हजूर। हेलो, जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हजूर फरमाइए,
1: आपको मैं तो अपने एहसास दिलाने के लिए कॉल कर रहा हूँ आपको। अभी कॉल है आपके पास आई थी, लिखी है माशाल्लाह।
0: सलामत रहें जी, सलामत रहें।
1: एक शाकर जी का एक आदमी ने शेर पढ़ पढ़ के छोड़ दिया, अगर वो अगर सुना दीजिए आप या किसी तरह।
0: कौन सा छोड़ दिया? क्या
1: छोड़ दिया मीन कि आप बातों बातों में, मैंने उस दिन भी अर्ज की थी आप जब बात करते हैं शायरी में तो नफर भी होती है, शेर क्या जो गजल बन जाती है।
0: गजल बन जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चले सलामत रहे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
1: बात तो सच है, ये रुसवाई जो भी आपने पहला उसका पढ़ा था, उसके बाद आपने दूसरा साथ में छू दिया, लेकिन उस सिलसिले में एक मजा था। लेकिन अगर आप ये गजल पढ़ दीजिए प्लीज।
0: चले ठीक है जनाब, ठीक है, मैं शामिल करता हूँ। सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है, कहां से? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, कौन है, कहां से?
2: जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, पिशावर से।
0: ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है,
2: अल्लाह का आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं शाही?
0: अच्छा हूँ जनाब, आगे चले, क्या कहेंगे?
2: बस ये कह रहा था कि मैंने अभी आपके ट्यून किया है और जैसे ट्यून किया और आप शायरी कर रहे थे तो माशाल्लाह आपकी शायरी बहुत प्यारी होती है।
0: बहुत शुक्रिया।
2: और आपको मैं हमेशा, मैं तो खैर डेली 12 बजे 2 बजे के हर सेगमेंट सुनता हूँ, सबके सुनता हूँ मैं।
0: ठीक है,
2: और भी मैं कॉल भी कर देता हूँ, मिल जाती है तो बात कर लेते हैं, ना मिले तो फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं नहीं मिले तो फिर।
0: मुझे पहली दफा सुना आपने या पहले भी सुना?
2: ऐसा लगता है जी कि आपको मैंने पहले भी सुना हुआ है।
0: ऐसा तो आप मुझे पहली दफा भी सुनेंगे तो यही लगेगा।
2: नहीं, ऐसी बात नहीं है,
0: ऐसी बात है। आप मुझे मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं पहले भी मिला हूँ कहीं, आप मुझे सुनेंगे तो आपको लगेगा मैंने पहले भी सुना। मैं ऐसा हूँ ना,
2: ये है बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने दूसरे चैनल से सुना हुआ है।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ना भी सुना फिर भी लगेगा।
2: बिल्कुल आपकी तरह आवाज, आपकी तरह लहजा, नाम भी कह सकते हैं,
0: नहीं था
2: क्योंकि 89.4
0: नहीं, उस पे नहीं था मैं,
2: वो तो नहीं थे आप। अच्छा, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग चेंज हो गई है उसकी ना, तो
0: नहीं, लेकिन जो जो नुक्ता जो नुक्ता मैं उठाना चाह रहा था वो आपने समझा नहीं है असल में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैंने बोल दिया ना और जो सुन रहे उनको समझ आ गया, और जिस जिस तक पहुंचना था पहुंच गया, मेरा मकसद पूरा हो गया।
2: ठीक है, आपने अगर जो जिसको समझाना था जो
0: मैं समझा दिया,
2: समझ आ गई।
0: मैं समझा दिया।
2: लेकिन ऐसी बात है कि आपने जो बात की है कि मैं ऐसा हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने पहली भी आपकी आवाज सुनी है, ऐसे ऐसे बात है शाह जी की आपकी आवाज हमने पहली भी सुनी है, काफी टाइम से सुन रहे हैं,
0: न जाने कब तक कहाँ था, मगर ये लगता है ये वक्त हमने पहले भी कहीं गुजारा है।
2: बेशक बेशक।
0: ऐसा अच्छा, चले क्या तो, कहेंगे जल्दी से क्या दें, अब वक्त तो कम है, जल्दी जल्दी कॉल लूंगा कुछ थोड़ी सी
2: और क्या। बस आपको से बात जो हो गई ये भी बहुत शुक्रिया, वो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए।
2: और जो भी आएंगे उनको जो है
0: उनको भी सलाम,
2: उनको भी सलाम।
0: कुछ चीज उनके लिए मंगानी हो तो बताएं।
2: आपने टॉपिक के बारे में कोई बात, मैंने
0: टॉपिक मेरा नहीं होता जनाब, यकीन करें। मैं प्रोग्राम के आगाज में कुछ तलाश कर रहा था कोई चीज कंप्यूटर पे, वो तलाश ही चल पड़ा। तो मैं तो इसी तरह आता हूँ जनाब, जहाँ बात चल पड़े, जहाँ मुझे आप ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। ठीक है,
2: मुझे पता है मैंने आपको शुरू से सुना हूँ।
0: अच्छा,
2: टॉपिक का पता नहीं था।
0: चले सलामत रहे, आबाद रहे,
2: खुश रहे।
0: बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौन है, कहाँ से?
3: जी मैं रवाज से नसीम बात कर रही हूँ।
0: ठीक है, करें।
3: सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम
3: भाई, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से, तो मैं अच्छी बात कर रही हूँ, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी कि नहीं। ये मेरी बात है कि बच्चियों को ना बहुत ज्यादा तालीम दिलवाए।
0: अच्छा ठीक है।
3: बच्चियों को इतनी तालीम दिलवाए हर बंदा कि बच्चियां अपने पांव पे खड़ी हो जाए।
0: सही बात, बिल्कुल ठीक बात है।
3: मोहताज ना रहे।
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक।
3: ये मेरी मेरी बहन है ना, वो गवर्नमेंट की टीचर है, माशाल्लाह उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो कभी भी भांजियों भांजियों पे और हम बहनों पे ग्रेज नहीं करती, हमें कुछ भी चाहिए हम बहन से मांग लेते हैं।
0: लेकिन मकसद सिर्फ पैसे को नहीं बनाना चाहिए, और बड़ी चीजें होती है। बार कहा आपने अच्छी बात की, खूबसूरत बात की, सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया
3: जी, बहुत बड़ी बात है ना जी।
0: जी ऐसे ही है, सलामत रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है,
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौन है, कहाँ से?
4: माशाल्लाह अमजद मीरपुर से बोल रहा हूँ।
0: ठीक है जनाब, आप ठीक है
4: जी? अल्लाह का शुक्र, आप दुआ कर दिया करें।
0: कर देंगे।
4: एक आपकी बजम है तो उस दिन पहले दिन मेरे पहली बार आपसे बात हुई थी, और फिर मैं आपको भूला नहीं।
0: अच्छा,
4: सुना तो यकीन करें।
0: देखिए ये
4: कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
0: रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये दूसरी बात होगी। अब मैं जरा उसके ना तम उसकी उसकी आगे एक बात उन्होंने की, जिसको मैं मिलता हूँ उसको लगता है पहले भी कहीं मिला हूँ, और फिर जिसको मिल ले तो उसको भूलता नहीं। दो बातें होगी, आगे चले।
4: नहीं नहीं नहीं, वो तो साफ जाहिर है अल्लाह का बनाया हुआ जो है ना ज़हनी निज़ाम जो है, वो
0: निज़ाम
4: की कोई ताकत बना नहीं सकती।
0: ऐसा ही है हकीकत,
4: वो ऐसा ही होता है। लेकिन एक जो दिल की दुनिया थोड़ी सी अलग होती है, उसमें कोई कोई बंदा आके ठहरता है, बाकी सब आते हैं चले जाते हैं।
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है।
4: तो मैंने उस दिन अर्ज की थी कि शेर व शायरी मतलब मुझे ना तो इतना शूफ है और ना ही मुझे ज्यादा शेर आते हैं, लेकिन चले मैं अपने अंदाज में एक शेर आपको सुना
0: सुना सुनाए सुनाए।
4: होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए।
0: वाह वाह वाह।
4: होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही।
0: नाम तो आए, थोड़ा आप क्रेडिट डलवाएं जनाब, नाम भी आ जाएगा। बहुत खूबसूरत गाया आपने बरकैफ, मुझे आप लोग उतार देते हैं पटरी से यार। एक और कॉलर लेता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب
5: عادل صاحب آپ ٹھیک ہیں؟
0: بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں.
5: میں یہ سوچ رہا تھا کہ عادل صاحب سے آج آگے کہ شاید میں دوبارہ تو نہیں کسی کی جگہ آ گیا.
0: میں آج اپنی جگہ آیا ہوں
5: نا.
0: آج میں اپنی جگہ آیا ہوں.
5: اچھا
0: وہ کیا ہے نا کہ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں, بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں.
5: جو پلیا صاحب نے کہا تھا جی. ہاں ہاں آپ اپنی جگہ آئے ہیں, میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں.
0: سنائے سنائے.
5: لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ اپنی نظم کی تمہید کے لیے چار مصرے سناتا ہوں.
0: سنائے سنائے سنائے.
5: نظم کی اپنی ہوگی کہ اپنی شان سے بحال کرتے ہوئے
0: اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے
5: تھک گیا ہوں سوال کرتے ہوئے.
0: بہت اچھا.
5: اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے
0: تھک گیا ہوں سوال کرتے ہوئے
5: اور عمر گزری ہے دشت و صحرا میں.
0: اچھا عمر گزری ہے دشت و صحرا میں.
5: رقص کرتے دھمال کرتے
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا.
5: بڑی مہربانی. نظم کو نوان ہے یہ یکا.
0: اچھا سنائیے آپ نے ویسے بڑی دفعہ.
5: میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ تمہید کے طور پہ میں نے کہا تھا.
0: سنائیے سنائیے.
5: دیکھیں سر اس خیال کو کہ آج گلی کی نکڑ پہ کھڑا میں چپ چاپ یہ سوچ رہا ہوں الف انار سے یہ یکے تک کا سفر کتنا کٹھن تھا میرے لیے. الف انار کو الف انا میں بدلتے دیکھ رہا ہوں.
0: واہ واہ واہ.
5: میں کیا سے کیا ہوتے دیکھ رہا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
5: میں کیا سے کیا ہوتے دیکھ رہا ہوں. بے بکری تے پنکھا تے پتی سب بھول گیا تو کیا وہ سارا وقت فضول گیا. جین جاگ تھا یا جاگ کچھ یاد نہیں. دل شاد نہیں آواز نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
5: نون نل کی طرح آنکھوں سے بہے جا رہا ہوں. میں آج خود کو بہت یاد آ رہا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
5: آج آپ نے کہا میں اپنی جگہ نون نل کی طرح آنکھوں سے بہے جا رہا ہوں. میں آج خود کو بہت یاد آ رہا ہوں. لے دیکھ مجھے لے دیکھ مجھے میں جھوم رہا ہوں. لام لٹوں کی طرح گھوم رہا ہوں. اپنے ہی گرد دائرے بن رہا ہوں. میں وقت کی دہلیز پر پڑے وہ سارے پل چن رہا ہوں.
0: بہت اچھا.
5: اب اسے ہی حسابے جا سمجھ کر گن رہا ہوں. سر گن رہا ہوں. میں ایک نقطے میں الجھایا گیا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
5: میں ایک نقطے میں الجھایا گیا ہوں. کسی ادھورے سچ کی طرح دیوار پر لکھ کے مٹایا گیا.
0: واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا.
5: میں ایک نقطے میں ٹھہرایا گیا ہوں. میں بہکا نہیں بہکایا گیا ہوں. میں بہلا نہیں بہلایا
0: بہلایا گیا ہوں. بہت اچھا.
5: میں الجھا نہیں الجایا گیا ہوں. دیکھیے ڈائیورٹ کر رہا ہوں کہ میں الجھا نہیں الجھایا گیا ہوں. تم میری آنکھوں میں ذرا غور سے دیکھو. شاید تمہیں کوئی بچہ وقت کی گاچی سے زندگی کی تختی دھوتا ہوا نظر آئے.
0: بہت اچھا.
5: ہاں اگر وہ بچہ لوٹ کر کبھی ادھر آئے تو اس سے کہنا یہ جو تیرے پاس کتابیں پڑی ہیں یہ اٹھا کر مجھے دے دے. میں ان پہ جمی گرد خود ہی صاف کر لوں گا. میں ان میں بچپنے کے وہ سارے رنگ بھر دوں گا. مجھے پڑھنا ہے اسکول جانا ہے اور پڑھ کے بھول جانا ہے.
0: پڑھ کے بھول جانا ہے. واہ واہ واہ.
5: آج گلی کی نکڑ پہ کھڑا میں چپ چاپ یہ سوچ رہا ہوں الف انار سے یہ یکے تک کا سفر کتنا کٹھن تھا میرے.
0: مجھے بیچ میں ایک شرارت سوجھ رہی ہے.
5: جی کریں نا سر شرارت.
0: نون غنہ سے کچھ ڈالنا تھا اس میں. نون غنہ سے کچھ ڈالے اس
5: میں. میں نے یہ نظم لکھی میں نے سلیم کوثر صاحب کو سنائی.
0: اچھا.
5: جب میں نے سلیم کوثر صاحب کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک کام کریں. میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ یہ یکا لگائیں.
0: اچھا.
5: تو میں نے کہا سر یکا کیوں لگاؤں؟ مطلب نا میں نے لکھا تھا کہ الف الف الف انار سے زندگی کی یہ تک کا سفر. کہتا نہیں بیٹا یہ یکا لگائیں آپ.
0: اچھا.
5: میں نے کہا سر یکا کیوں لگاؤں؟ کہنا یکا سحر کی علامت. یہ میرے لیے بڑی اعزاز.
0: یہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ نون غنہ کس کی علامت ہے. ٹھیک ہے.
5: نون غنہ اگر آپ لگائیں گے نا हम दोबारा रिश्ते आ गए।
0: अच्छा जी, सलाम
5: मैं अली से ये तक गेहूँ दरमियान में रह जाएगा वो दोनों
0: बोला। अच्छा, सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लंबी कॉल होगी जनाब, लंबी कॉलें नहीं लेनी है, लंबी कॉलें नहीं करनी है, छोटी कॉलें करनी है अब टाइम क्योंकि शॉर्ट है हमारे पास, और मुझे मजा आने लग गया। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम मुर्शिद, वो सॉरी मैं हमजीत बोल रहा हूँ मीरपुर से, वो हाथ मेरा टच हो गया था, कट गई थी कॉल।
0: आप वो हॉन्टो पे मेरे नाम वाले?
6: जी सर।
0: सुनाए सुनाए, जल्दी सुनाए। टच नहीं हुआ था, बैलेंस खत्म हुआ था, ये ऐसे नहीं चलेगा, सही बताए, बैलेंस खत्म हुआ था। तो मैंने पता क्या कहा था, मैंने ये कहा था होंडा पे उनके नाम आएगा, थोड़ा खर्चा करे, बैलेंस वैलेंस डलवा के रखे। मुझे आप लोगों ने असल में शरारती कर दिया, मैं किसी और फेज में जाने लग गया। मैं चंगा भला प्रोग्राम मैंने चलाया था, वो मैं जुदाई से होता हुआ और कहां से तलाश करता करता किधर आया था, अब देखे मैं किधर पहुंच गया, भटक गया हूँ थोड़ा सा। चले आप सुनाए होंटों पे कभी उनके मेरा नाम ही है।
6: थैंक यू सर जी, मैं बस क्या एक शेर ही सुनाना था, बहरहाल मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा।
0: करें करें करें।
6: हैरान है लबस्ता है दिलगीर है उनके, हैरान है लबस्ता है दिलगीर है उनके, खुशबू की जुबानी तेरा पैगाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए।
0: बहुत अच्छा।
6: मुझे ये ना, मेरे कजन है वो जा रहे हैं उधर पोलैंड में, तो वो कह रहे थे कि यार अमजद मैं सुबह निकल जाऊंगा, मैं एफएम सुन रहा हूँ शादी का प्रोग्राम, वहां पे आओ और मुझे ये शेर सुनाओ। तो ये मैंने उनकी स्पेशल कहने पे फिर मैंने ये सुनाया।
0: चलें जी चलें, बहुत अच्छी बात है, उनको भी हमारा सलाम और आपको भी, सलामत रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, आपकी आवाज और निखरे। ठीक है जनाब, आबाद रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लूंगा बस पक्का, उसके बाद बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
7: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
7: बात सही आ रही है आसिफ भाई?
0: नहीं
7: नहीं सही नहीं आ रही।
0: पूछा क्यों है आपने, आपको शक क्यों है कि आवाज ठीक आ रही है?
7: मैं पहले मेरी लाइन ड्रॉप हुई है ना।
0: अच्छा, आपकी लाइन ड्रॉप हुई है मेरी। अच्छा चले बताए, क्या
7: लाहौर से बोल रहा हूँ, अलीबाग गार्डन से, अब्दुलूर हाशमी लाहौर से।
0: मैं लाहौर आया था, आप मिले नहीं मुझसे,
7: काफी दिनों के बाद बात हो रही है।
0: ठीक है सुनाए। जी जी,
7: तो आज मैं हमारे लाहौर के एक बड़े खूबसूरत शहर है कुंवर एजाज राजा,
0: ठीक है,
7: उनकी गजल शामिल करूंगा एक
0: करें।
7: उससे पहले एक गुलाम मोहम्मद कासर का एक कथा।
0: इतना टाइम नहीं है वैसे, फिर गजल के अशार थोड़े करने हैं आपने, ठीक है सुनाए सुनाए।
7: नहीं फिर, नहीं फिर गजल में शेर।
0: सुनाए सुनाए।
7: अपनी खैत में जो बस गए हैं वो दीवारों दर छोड़ दें,
0: ठीक है,
7: धूप आंखों में चुभने लगी है तो के हम सफर छोड़ दें।
0: वाह वाह वाह।
7: दस बरदार हो जाएं फरियाद से और बगावत करें,
0: वाह वाह,
7: क्या सवाली तेरे कसरे इंसाफ, जंजीरें दर छोड़ दें। जब लुआबे दहन अपना तरियाक है, दस्तो बाजू भी हैं, सांप गलियों में लहरा रहे हैं तो के हम नगर छोड़ दें।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
7: शहर यारों से डर जाएं हम, हक प्रस्ती से तौबा करें, अपने अंदर भी एक आदमी है इसे हम किधर छोड़ दें।
0: और
7: पता है हमने देखा है दरियाओं का रुख, कुंवर शहर की समत है, शहर वाले अगर बेखबर हैं तो क्या बेखबर छोड़ दें। अपनी ख्वाहिश में जो बस गए हैं वो दीवारों दर छोड़ दें, धूप आंखों में चुभने लगी है तो क्या हम सफर छोड़ दें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।

जी हजूर, अब लौट कर आऊंगा उस कैफियत की जानिब जहां से आगाज हुआ था। तलाश से होता हुआ इंसान न जाने क्या तलाश करता करता अपने माजी को अपना रखते सफर बांधते हुए अपने वजूद के कमरे को खंडर बनाता चला जाता है, जहां बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया करता है और वो सब कुछ इंटेंजिबल, बहुत खूबसूरत लफ्ज है अंग्रेजी का, जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो सब कुछ इंटेंजिबल हुआ करता है, क्योंकि उसमें जज्बे होते हैं, उसमें एहसासात हुआ करते हैं, उसमें कुछ लहजे हुआ करते हैं। वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। अपनी जीस्त के सफर में ऐसा रखते सफर बांधता हुआ इंसान, जिसको लोग मिलते चले जाते हैं, उसको लोग मयसर आते रहते हैं, अपनी जिंदगी में वक्त गुजारता है। और कभी गौर कीजिएगा, हम लोगों के लहजे अपनाया करते हैं, हम लोगों की बातों को बांध लिया करते हैं, हम वो बातें दोहराया करते हैं। कोई एक चाल होती है जिस चाल पर हमारी चलने की काविश हुआ करती है। बहुत अजीब होते हैं हम इंसान, और जो कोई बहुत पसंद आ जाए उसकी जात में ढलने की काविश हो जाती है। रांझा रांझा कर दीवे मैं आपे रांझा हुई, रांझा रांझा आखो नी मैनू हीर ना आखो कोई। और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो होवत सो तोर। जब अपना वजूद इंसान किसी के हवाले कर दिया करता है, वो इंसान रखते सफर बांधता हुआ इस सफर में गामजन रहता है, और गामजन भी कैसे ना रहे, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, उसको चलते रहना है, उसको चलते जाना है, वो रुक सकता नहीं है। ये सांसें हैं जो चलती रहेंगी, जो नहीं ठहरेंगी। जो दुख आएगा, जो दर्द आएगा, उसको सहना होगा, उसको बर्दाश्त करना होगा, उसको लेकर चलना होगा, और लेकर चलते हैं हम इंसान। दुखों को भी बर्दाश्त किया करते हैं, हमें दरियाफ्त करने से हमें तस्खीर करने तक बहुत है मरहले बाकी, हमें जंजीर करने तक हजारों बार सोचोगे, हमें तहरीर करने तक हमारा दिल है पैमाना, सो पैमाना तो छलकेगा, चलो दो घूंट तुम भर लो हमें तासीर करने तक। अपना आप पेश कर दिया करता है इंसान, और बस वो जज्बे जो उसकी जात के अंदर पनपते रहते हैं, उनका मान रखने की काविश हुआ करती है, यहां तक कि उस सफर में तन्हाई यूं कहूंगा कि मुयस्सर आ जाती है। तन्हाई से बहुत डरते हैं हम इंसान, और अगर नहीं डरते तो कभी तन्हाई मुयस्सर आई तो मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ करती है। लेकिन वो जो चंद लम्हों के लिए होती है, जब हम किसी को कह देते हैं मुझे तन्हा छोड़ दो, दर हकीकत वो तन्हाई हुआ नहीं करती। लेकिन उसी को समझते हुए, उसी को जहन में रखते हुए, वो जो लम्हे मुयस्सर आते हैं, उसमें इंसान की मुलाकात अगर खुद से हो जाए तो उसको मालूम पड़ता है कि वो कमरा खोलूं, वो मुकफ्फल कमरा, उसमें रखा सामान अपने सामने रख कर देखूं, उसको छूते हुए, वो ऐसा सामान जिसको छुआ जा नहीं सकता, उसको छूते हुए अपनी उंगलियों की पोरों को जख्मी करूं,
अपने माजी को अपने सामने चलता देखूं। वो तन्हाई जो हुआ करती है चंद लम्हों की सही, कुछ देर की सही, वो बीतती नहीं है, वो गुजरती नहीं है। लेकिन इंसान महसूस करता है उस तन्हाई को, क्योंकि मुजमहल होता है उस लम्हे और उस माजी को तरतीब देना चाहता है फिर से, जो गुजर चुका है, जो कभी हाथ में था, जहां कुछ गलतियां हो गई थी और अब उनमें कोई रद्दबदल हो नहीं सकता। तो बस फिर अपने साथ सफर करता हुआ इंसान, अपने साथ वक्त गुजारता हुआ इंसान, शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, झिल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ये रुपहली छाँव, ये आकाश पे तारों का जाल, जैसे सूफी का तस्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रात हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर कदम पे इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयां, भर रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयां, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। मुंतजर है एक तूफान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वा मेरे लिए, हर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूं मैं ये आसरा भी तोड़ दूं, हाँ मुनासिब है ये जंजीरे हवा भी तोड़ दो, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। भड़के उस अंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, उसका गुलशन फूंक दूं, उसका शबिस्ता फूंक दूं, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसरे सुल्तान फूंक दूं, ऐ गबे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं।

तन्हाई की गली में हवाओं का शोर था, आंखों में सो रहा था अंधेरा, थका हुआ सीने में जैसे तीर सा पैवस्त हो गया था, कितना दिल खराश उदासी का कह कहा। यूं भी हुआ कि शहर की सड़कों पे बारहा हर शख्स से मैं अपना पता पूछता फिरा, बरसों से चल रहा है कोई मेरे साथ साथ, है कौन शख्स उससे मैं एक बार पूछता। आज़र ये किसकी समत बढ़े जा रहे हैं लोग, इस शहर में तो मेरे सिवा कोई भी न था।

0: जी हाँ जनाब, मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। कुछ पैगामात हैं जो मुझे शामिल करने हैं और वो शामिल करूंगा। अब्दुल नूर हाशमी ने लाहौर से साथ दिया सलाम पेश किया। मोहम्मद शफीक हैं और नानकाना साहब से आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। राना नज़ाकत नाज हैं ओकाड़ा से और आपने कुछ अशार लिख भेजे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। नूर फजर हैं लाहौर से और फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको बोलने का अंदाज़ पसंद आया, बहुत शुक्रिया। आपने कहा हसन कुज़ अगर सुना दें, लेकिन वक्त बहुत महदूद है, अभी कुछ थोड़ा सा मुझे वक्त से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन हसन कुज़ अगर नहीं हो सकेगी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। सलमा हैं और आपने सलाम पेश किया, वालेकुम अस्सलाम। और मिजाज कैसे हैं? मिजाज अच्छे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी कुछ पैगामात शामिल करेंगे। हाँ जी, इसके अलावा जनाब साइका नसीम हैं, सलाम पेश करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आबी महमूद हैं हमारे साथ, आपने कहा नाइस शो, बहुत शुक्रिया। सलीम हनीफ हमारे साथ हैं, सलाम पेश करते हैं और लाहौर से सुन रहे हैं। आपने कहा फराज अहमद का कोई कलाम सुना दें, जी ज़रूर सुनाते रहते हैं। अली अब्बास हैं और आपने कहा सलामत रहिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शहजाद हमारे साथ हैं, सलाम पेश करते हैं। किंजा उस्मान हैं, आपने भी सलाम लिख भेजा है। एक कॉल शामिल कर लेते हैं जी, आखिरी कॉल प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे?
0: बहुत अच्छा हूँ जी, कौन है, कहाँ से?
1: जी लाहौर से इरम बात कर।
0: लाहौर से इरम बात कर रही हैं?
1: जी लाहौर से इरम।
0: जी ठीक है, फरमाइए कैसी हैं आप? ठीक हैं
1: जी, शुक्र अल्लाह का। सुना
0: मैं अच्छा हूँ, क्या कहेंगी
1: जी? शायरी फराज अहमद।
0: फरमाइए फरमाइए।
1: ये भी क्या कम है के दोनों के भरम कायम है।
0: ये भी क्या कम है कि दोनों के भरम कायम है।
1: ये भी क्या कम है कि दोनों के भरम कायम है। उसने बख्शिश नहीं की और हमने गुजारिश नहीं की।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: सलामत रहे सर, सब सुनने वालों को सलाम, अल्लाह की कोशिश कर।
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अम्बरीन है हमारे साथ और राज़े हयात है, राज़े अफशां करते हो, कमाल दोस्त हो, कमाल करते हो, बहुत अच्छा जी, सलामत रहिए। इसके अलावा हाजरा बतूल हमारे साथ हैं और समीउल हक हैं, सानिया सैयद सुनती हैं। किंजा उस्मान हैं, सलीम हनीफ हैं, फरीहा जन्नत सुनती हैं, जीशान दुरानी हमारे साथ हैं, हिरा गिलानी हैं, मिरहा जबीन साथ देती हैं, अमायल खान हैं और विरशा नूर ने साथ दिया। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया।